0: रेडियो सारंग 107.8 FM। जय हे
1: तुलुवलानी। रेडियो सारंग 107.8 FM। रंग रंगदा बदक इत्ते तुलु प्रस।